0: क्या?
1: सुनो ना।
2: बोलो ना।
1: अपने घर को छोड़ के जाऊं, इतनी मैं नादान नहीं हूँ।
0: अरे तेरी

लग जा गले, ए लग जा गले, दुनिया जले, छम छम छम छम छम छम छम, ए गढ़ हम तुम पे दिल निसार करता है, रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है।